0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापान के एक अस्पताल ने इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स या आईपीएस से हासिल शुदा दिल के अजलाती खलियों की तहों का इस्तेमाल करते हुए दिल का पहला ऑपरेशन किया है। मार्च में हुकूमत की जानिब से इस तरीके इलाज की मंजूरी के बाद ये अपनी नौयत की पहली सर्जरी है। एनएचके को मालूम हुआ है कि यह ऑपरेशन मंगल को ओसाका सिटी के ओसाका के सत्स अस्पताल में किया गया। कल भी अजलाती खलियों की तहें या री हार्ट हुकूमत की तरफ से मंजूरी के बाद सितंबर में हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे कार में शामिल की गई हैं। इन शीटों की पैबंदकारी ऐसे मरीज में की गई जिसकी उम्र 50 के पेटे में है और उसे दिल का शदीद आर्जा लाहक है। सर्जरी तकरीबन एक घंटे में मुकम्मल हुई और मरीज की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। इन शीटों को तैयार करने के इंचार्ज और ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अस्पताल के सदर सावा योशिकी ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि यह इलाज तेजी से आम होगा, लिहाजा इससे उन लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो सकेगी जो इस तरह के आर्जे से दोचार हैं। इन शीटों के लिए मशरूत हुकूमती मंजूरी मिली है जिसमें मजीद सर्जरियों के जरिए इनकी हिफाजत और अफादियत की तस्दीक करना शामिल है। इन्हें तैयार करने वाली कंपनी का हदफ 2033 तक मुल्क भर में तकरीबन 20 तिब्बी मराकज में 75 मरीजों में इनकी पैबंदकारी करना है। बैनुल्कवामी फौजदारी अदालत आईसीसी ने मंगल को ऐलान किया है कि इस साल की सालाना असेंबली को नीदरलैंड्स के दी हेग में मुंतकिल कर देगी। असेंबली नवंबर के आखिर में शुरू होती है। असल में ये दिसंबर में न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहदा के सदर दफ्तर में होनी थी। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालत पर दबाव डालते रहे हैं। उनकी इंतजामिया ने अगस्त में सरबरा अकाने तोमोको समेत आईसीसी की क्यादत पर पाबंदियों का ऐलान किया। इसकी वजह से वीजा पाबंदियों जैसे खदशात पैदा हो गए जो मुमकिन तौर पर अकाने समेत कुछ अहदेदारों को जाती तौर पर असेंबली में शामिल न होने पर मजबूर कर सकती हैं। ज़राए का कहना है कि मकाम इनेकाद की तब्दीली गैर मामूली है। मलेशिया ने म्यांमार के 5,000 पनाहगुज़ीनों को वापस अपने वतन भेजना शुरू कर दिया है, जहां फौज के 2021 में बगावत के जरिए इक्तदार पर कब्जे के बाद से शोरश जारी है। वतन वापसी का पहला मरहला मंगल को शुरू हुआ जब तकरीबन 1500 अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया। पनाहगुज़ीन बसों के जरिए एक बंदरगाह पर पहुंचे जहां उन्हें म्यांमार की बहरिया के जहाजों पर मुंतकिल किया गया। मलेशिया ने इस मंसूबे का ऐलान गुज़िश्ता माह म्यांमार के फौजी हमायत याफ्ता हुक्काम के साथ एक मुआहदे के तहत किया था। कुआलालंपुर का कहना है कि वतन वापसी का अमल मुकम्मल तौर पर रजाकाराना है। यह फैसला ऐसे वक्त किया गया है कि जब मुहाजरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था और महाजर मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे थे। अकवामे मुत्तहिदा का कहना है कि मलेशिया म्यांमार के तकरीबन 1,90,000 महाजरीन की मेजबानी कर रहा है। 60% से ज्यादा पनाहगुज़ीन रोहिंग्या मुसलमान अकलियत हैं जिन्हें अपने मुल्क में जबरो इस्तबदाद का सामना है। अकवामे मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की तंजीमों ने खबरदार किया है कि फौज और जमहूरियत की हामी कुवतों में झड़पों के साथ साथ नस्ली मुसल्ला ग्रोहों के दरमियान जारी लड़ाई के माहौल में पनाहगुज़ीनों की महफूज वापसी के लिए सूरत हाल साजगार नहीं है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 1 अक्टूबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गो और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान में विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट शुल्क बृहस्पतिवार से बढ़ा दिया गया है। पहले निवास दर्जे के नवीनीकरण या परिवर्तन का शुल्क 6,000 येन यानी लगभग $38 और ऑनलाइन शुल्क 5,500 येन यानी लगभग $35 था। बृहस्पतिवार से ये शुल्क निवास अवधि के आधार पर अलग-अलग कर दिया गया है। 3 महीने के लिए निवास अवधि बढ़वाने या निवास दर्जा बदलवाने के लिए अब काउंटर और ऑनलाइन शुल्क बढ़ाकर 10,000 येन यानी लगभग $63 कर दिया गया है। निवास अवधि को 1 साल के लिए बढ़वाने का शुल्क 33,000 येन यानी लगभग $210 और इसका ऑनलाइन शुल्क 27,000 येन यानी लगभग $170 हो गया है। निवास अवधि को 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बढ़वाने का शुल्क 75,000 येन यानी लगभग $476 और इसका ऑनलाइन शुल्क 65,000 येन यानी लगभग $413 कर दिया गया है। स्थायी निवास परमिट का शुल्क 10,000 येन से बढ़ाकर 2,00,000 येन यानी लगभग $1,270 कर दिया गया है। इसका आवेदन केवल काउंटर पर ही किया जा सकता है। शरणार्थी दर्जा प्राप्त लोगों और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों सहित कुछ व्यक्तियों को शुल्क में छूट दी गई है। स्थायी निवास परमिट के जांच संबंधी दिशा निर्देशों में भी संशोधन किया गया है। ये परमिट देने या ना देने पर विचार करते समय अधिकारी इस बात पर गौर करेंगे कि आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय समान आकार के जापानी परिवार की औसत आय से लगातार अधिक रही है या नहीं। जापान में सितंबर तक की तिमाही में बड़ी विनिर्माण कंपनियों के कारोबारी विश्वास में सुधार हुआ। बृहस्पतिवार को जारी बैंक ऑफ जापान के तांकान सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार एआई संबंधी मांग के बलबूते लगातार छठी तिमाही में विश्वास बढ़ा। मनोभाव सूचकांक 24 अंक पर रहा, जो पिछली तिमाही से 2 अंक अधिक है। धनात्मक आंकड़ा दर्शाता है कि निराशावादी रुख रखने वाली कंपनियों की तुलना में आशावादी कंपनियों की संख्या अधिक है। केंद्रीय बैंक ने लगभग 9,000 कंपनियों का सर्वेक्षण किया। सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग के चलते विशेष रूप से अलौह धातु, उत्पादन मशीनरी और विद्युत मशीनरी क्षेत्रों का विश्वास सुधरा। हालांकि इसी अवधि में गैर विनिर्माताओं के मनोभाव में 2 अंकों की गिरावट आई और ये धनात्मक 35 पर पहुंच गया। कर्मचारियों और कच्चे माल की बढ़ती लागत के साथ खराब मौसम ने न केवल खुदरा विक्रेताओं बल्कि आवास और रेस्तरां क्षेत्रों की कंपनियों का विश्वास भी कमजोर किया। श्रमिकों की भारी कमी वाले क्षेत्रों में विदेशियों को आमंत्रित करने की जापान की योजना एक चुनौती का सामना कर रही है। जापानी शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालयों और अन्य संस्थानों को इस नए कार्यक्रम की भाषा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई आ सकती है। अगले साल अप्रैल से शुरू होने वाले 2 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 4,20,000 विदेशी स्वीकारे जाने की उम्मीद है। निर्माण, नर्सिंग देखभाल, कृषि व अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली ये योजना जापानी भाषा प्रवीणता या अध्ययन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने वाले लोगों पर लागू होती है। नया कौशल विकास रोजगार कार्यक्रम 30 वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान लेगा। दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण ना कर पाने वाले आवेदकों को काम शुरू करने से पहले 100 या उससे अधिक घंटों की भाषा कक्षाएं लेनी होंगी और इस 3 साल के कार्यक्रम के दौरान अपने नियोक्ताओं के खर्च पर 100 या उससे अधिक घंटों की कक्षाएं भी लेनी होंगी। जून में जापानी भाषा के लगभग 900 विद्यालयों और अन्य संस्थानों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 30% से भी कम ने कहा कि वे ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं या प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं। आव्रजन सेवा एजेंसी ने जापानी भाषा के

विद्यालयों और अन्य संस्थानों से सहयोग प्राप्त करने के लिए पिछले महीने एक सर्वेक्षण करते हुए उन्हें ब्यौरा दिया। एजेंसी के एक अधिकारी ने उनसे गुणवत्ता बनाए रखते हुए प्रशिक्षण के अवसर सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने पर विचार करने का आग्रह किया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। चीन में बृहस्पतिवार से राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। ये वो समय है जब करोड़ों चीनी लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में आई खटास के कारण जापान आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आने की आशंका है। चीन सरकार का अनुमान है कि छुट्टियों के दौरान 2.13 अरब यात्राएं होंगी। चीन की प्रमुख ट्रैवल एजेंसी का कहना है कि इस अवधि के दौरान लोकप्रिय गंतव्य दक्षिण कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप हैं। पहले जापान चीनी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय था, लेकिन वो इस साल शीर्ष पायदानों में शामिल नहीं है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के मद्देनजर चीनी एयरलाइंस कंपनियों ने जापान के कई मार्गों के लिए अपनी सेवाएं स्थगित कर दी हैं। ईरान सरकार का कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के उसके प्रस्ताव पर उसे अमरीका से प्रतिक्रिया मिल गई है, लेकिन बातचीत की संभावना कम है क्योंकि दोनों पक्ष शर्तों को लेकर अब भी एकमत नहीं हैं। तेहरान ने बुधवार को ये घोषणा की। ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने के लिए 7 दिवसीय योजना प्रस्तुत की थी। अमरीका और ईरान के अधिकारी कतर के मध्यस्थों की मदद से अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहे हैं। ईरानी मीडिया केंद्रों की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के समक्ष अमरीका की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। इस प्रतिक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बुधवार को एक संबंधित सूत्र के हवाले से बताया कि दस्तावेज में जून में हुए समझौते के नवीन संस्करण पर दोनों पक्षों को वापस लाने की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ठोस कदम उठाना भी शामिल है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 31वें पाठ में आप साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखेंगे।
1: मिया और काइतो हारूसान हाउस में गपशप कर रहे हैं कि तभी माइक भी वहां आ जाता है। माइक अमेरिका से है और उसे जापान की पॉप संस्कृति में विशेष रुचि है।
0: तो आइए सुनते हैं 31वें पाठ की बातचीत।
2: कोंदो नो दोयोबी काइतो तो निंजा हकुबुत्सुकान नी इकिमासु।
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
2: हाई मिन्ना दे 一緒に行きませんか?
3: あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले माइक ने ताम और मिया से कहा,
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます।
0: इस शनिवार काइतो के साथ निंजा संग्रहालय जा रहा हूं।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
1: माइक जी, आपको निंजा सचमुच पसंद है ना?
0: तब माइक ने उन्हें भी साथ चलने को कहा।
2: हाय मिन्ना दे इश्शो नी इकिमासेन का?
0: हाँ क्यों ना, सब साथ चलें।
1: इस पर मिया ने उत्तर दिया,
3: दोयोबी वा चोट्टो।
1: ओह, शनिवार को तो जरा।
0: ताम ने भी कहा,
3: वाताशी मो जुग्यो गा अरिमास।
1: मेरी भी क्लास है।
0: ये सुनकर काइतो बोला,
4: जानने,
0: ये तो अफसोस की बात है।
4: जा, फ्तारी दे इको।
0: तो फिर हम दोनों चलते हैं।
1: माइक और काइतो जिस संग्रहालय में जाने वाले हैं वो मिए प्रिफेक्चर में है। वहाँ का ईगा उएनो क्षेत्र निंजा के गृहनगर के तौर पर जाना जाता है। संग्रहालय में लोग निंजा के घर देख सकते हैं और उनकी प्रस्तुति का भी आनंद ले सकते हैं। आज का मुख्य वाक्य है,
2: इश्शो नी इकिमासेन का,
1: यानी क्यों ना साथ चलें। ये वाक्य सीखकर आप दूसरों को कहीं साथ चलने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
5: इकिमासेन
0: है क्रिया,
5: इकु
0: यानी जाना का विनम्र नकारात्मक रूप, और उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द का लगाकर आप वाक्य को निमंत्रण में बदल सकते हैं।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इश्शो नी इकिमासेन का
1: साथ चलने के लिए आमंत्रित करने का तरीका है। इसे बनाने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर
5: मासेन
1: लगा है और उसके बाद जुड़ा है का, जिसका स्वर ऊंचा है।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इकिमासेन का
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला दूसरी महिला को कहीं साथ चलने का निमंत्रण दे रही है।
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा,
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
1: क्यों ना आज शाम को साथ खाना खाने चले।
0: यहाँ
5: कोंबन
0: का अर्थ है आज शाम,
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में, और
5: गोहान
0: का मतलब है खाना। तो
5: गोहान ओ तबे नी इकु
0: का मतलब हुआ खाना खाने के लिए जाना।
1: क्रिया
5: इक
1: यानी जाना से बना है
5: इकिमासेन का,
1: जो किसी को साथ में कहीं चलने का सुझाव देने का तरीका है।
0: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
1: ठीक है, चलते हैं।
5: ई देसु ने
0: का उपयोग किसी की बात मानने के लिए किया जाता है, और
5: इकिमाशो
0: है क्रिया
5: इक
0: यानी जाना का माशो रूप, इसका इस्तेमाल साथ में कुछ करने का सुझाव स्वीकारते समय किया जाता है।
1: पाठ 22 में भी हमने साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखा था और उस समय माशो का इस्तेमाल किया था, जैसे शाशिंगो तोरी माशो, यानी फोटो खींचते हैं।
0: उसमें और मासिंका में ये अंतर है कि माशो साथ में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका है, जबकि मासिंका विनम्र तरीके से ये पूछने के लिए है कि दूसरे व्यक्ति के पास साथ चलने का समय है या नहीं।
1: अब वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? कोनबान इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप अपने मित्रों के साथ बारबेक्यू करना चाहते हैं। सबके साथ को जापानी भाषा में कहेंगे
5: मिन्ना दे,
0: और बारबेक्यू करना के लिए कहेंगे
5: बारबेक्यू ओ सुरु।
0: क्रिया
5: सुरु
0: यानी करना का मास रूप है
5: शिमास।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: और अब सीख लेते हैं आज का सहज वाक्य जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: 土曜日はちょっと。
0: असल में
5: ちょっと
0: का अर्थ है जरा। इसकी अंतिम ध्वनि को लंबा खींचते हुए हल्की आवाज में बोलने का भाव है कि आप हिचकते हुए मना कर रहे हैं। तो मना करने के लिए आप बोलेंगे
5: छोटो।
1: किसी सुझाव या निमंत्रण को मना करते समय अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिया ने कहा
5: तोयोबी वा छोटो,
1: जो घुमा फिराकर ये कहने का तरीका है कि शनिवार को मैं व्यस्त हूँ या नहीं जा सकती।
0: अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लेते हैं।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं निंजा के बारे में।
1: निंजा का मुख्य काम था दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करना और खुफिया अभियान पूरे करना। उनका इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे लगभग 15वीं से 16वीं सदी के बीच आपस में लड़ते सामुराई सेनापतियों के दौर में सक्रिय थे।
0: मिए प्रिफेक्चर के ईगा क्षेत्र के निंजा और शिगा प्रिफेक्चर के कोगा क्षेत्र के निंजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
1: उनकी पोशाक देखकर लगता है जैसे वे खुफिया काम करने के लिए ही बने हैं, और दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करते समय तो निंजा अक्सर वेश बदल लेते थे।
0: मांगा या फिल्मों में निंजा जिस तरह के जादुई कारनामे करते हैं वो अक्सर काल्पनिक होते हैं, लेकिन असली निंजा भी कमाल के होते थे। उनके पास शुरिकेन होते थे, ये सितारे की आकृति का हथियार होता है जिसे दुश्मन पर दूर से फेंक सकते हैं।
1: इसके अलावा निंजा दबे कदम चलते थे ताकि लोग ये न जान पाए कि वो आसपास हैं, और उनके पास धुआं छोड़ने वाले बम भी होते थे।
0: कभी कभी वे मनोविज्ञान की मदद से अपने अभियान पूरे करते थे, और ये माना जाता है कि सामुराई सेनापति प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के रूप में उनका आदर किया करते थे। लेकिन उनके असली काम के बारे में अब भी बहुत कम जानकारी है, शायद इस वजह से ही निंजा इतने लोकप्रिय हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में माइक और काइतो मिए प्रिफेक्चर में निंजा संग्रहालय जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
8: 国際放送ラジオ日本です。 東京からお送りします。
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 1 अक्टूबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गो और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान में विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट शुल्क बृहस्पतिवार से बढ़ा दिया गया है। पहले निवास दर्जे के नवीनीकरण या परिवर्तन का शुल्क 6,000 येन यानी लगभग $38 और ऑनलाइन शुल्क 5,500 येन यानी लगभग $35 था। बृहस्पतिवार से ये शुल्क निवास अवधि के आधार पर अलग-अलग कर दिया गया है। 3 महीने के लिए निवास अवधि बढ़वाने या निवास दर्जा बदलवाने के लिए अब काउंटर और ऑनलाइन शुल्क बढ़ाकर 10,000 येन यानी लगभग $63 कर दिया गया है। निवास अवधि को 1 साल के लिए बढ़वाने का शुल्क 33,000 येन यानी लगभग $210 और इसका ऑनलाइन शुल्क 27,000 येन यानी लगभग $170 हो गया है। निवास अवधि को 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बढ़वाने का शुल्क 75,000 येन यानी लगभग $476 और इसका ऑनलाइन शुल्क 65,000 येन यानी लगभग $413 कर दिया गया है। स्थायी निवास परमिट का शुल्क 10,000 येन से बढ़ाकर 2,00,000 येन यानी लगभग $1,270 कर दिया गया है। इसका आवेदन केवल काउंटर पर ही किया जा सकता है। शरणार्थी दर्जा प्राप्त लोगों और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों सहित कुछ व्यक्तियों को शुल्क में छूट दी गई है। स्थायी निवास परमिट के जांच संबंधी दिशा निर्देशों में भी संशोधन किया गया है। ये परमिट देने या ना देने पर विचार करते समय अधिकारी इस बात पर गौर करेंगे कि आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय समान आकार के जापानी परिवार की औसत आय से लगातार अधिक रही है या नहीं। जापान में सितंबर तक की तिमाही में बड़ी विनिर्माण कंपनियों के कारोबारी विश्वास में सुधार हुआ। बृहस्पतिवार को जारी बैंक ऑफ जापान के तांकान सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार एआई संबंधी मांग के बलबूते लगातार छठी तिमाही में विश्वास बढ़ा। मनोभाव सूचकांक 24 अंक पर रहा, जो पिछली तिमाही से 2 अंक अधिक है। धनात्मक आंकड़ा दर्शाता है कि निराशावादी रुख रखने वाली कंपनियों की तुलना में आशावादी कंपनियों की संख्या अधिक है। केंद्रीय बैंक ने लगभग 9,000 कंपनियों का सर्वेक्षण किया। सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग के चलते विशेष रूप से अलौह धातु, उत्पादन मशीनरी और विद्युत मशीनरी क्षेत्रों का विश्वास सुधरा। हालांकि इसी अवधि में गैर विनिर्माताओं के मनोभाव में 2 अंकों की गिरावट आई और ये धनात्मक 35 पर पहुंच गया। कर्मचारियों और कच्चे माल की बढ़ती लागत के साथ खराब मौसम ने न केवल खुदरा विक्रेताओं बल्कि आवास और रेस्तरां क्षेत्रों की कंपनियों का विश्वास भी कमजोर किया। श्रमिकों की भारी कमी वाले क्षेत्रों में विदेशियों को आमंत्रित करने की जापान की योजना एक चुनौती का सामना कर रही है। जापानी शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालयों और अन्य संस्थानों को इस नए कार्यक्रम की भाषा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई आ सकती है। अगले साल अप्रैल से शुरू होने वाले 2 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 4,20,000 विदेशी स्वीकारे जाने की उम्मीद है। निर्माण, नर्सिंग देखभाल, कृषि व अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली ये योजना जापानी भाषा प्रवीणता या अध्ययन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने वाले लोगों पर लागू होती है। नया कौशल विकास रोजगार कार्यक्रम 30 वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान लेगा। दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण ना कर पाने वाले आवेदकों को काम शुरू करने से पहले 100 या उससे अधिक घंटों की भाषा कक्षाएं लेनी होंगी और इस 3 साल के कार्यक्रम के दौरान अपने नियोक्ताओं के खर्च पर 100 या उससे अधिक घंटों की कक्षाएं भी लेनी होंगी। जून में जापानी भाषा के लगभग 900 विद्यालयों और अन्य संस्थानों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 30% से भी कम ने कहा कि वे ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं या प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं। आव्रजन सेवा एजेंसी ने जापानी भाषा के विद्यालयों और अन्य संस्थानों से सहयोग प्राप्त करने के लिए पिछले महीने एक सर्वेक्षण करते हुए उन्हें ब्यौरा दिया।
एजेंसी के एक अधिकारी ने उनसे गुणवत्ता बनाए रखते हुए प्रशिक्षण के अवसर सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने पर विचार करने का आग्रह किया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। चीन में बृहस्पतिवार से राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। ये वो समय है जब करोड़ों चीनी लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में आई खटास के कारण जापान आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आने की आशंका है। चीन सरकार का अनुमान है कि छुट्टियों के दौरान 2.13 अरब यात्राएं होंगी। चीन की प्रमुख ट्रैवल एजेंसी का कहना है कि इस अवधि के दौरान लोकप्रिय गंतव्य दक्षिण कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप हैं। पहले जापान चीनी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय था, लेकिन वो इस साल शीर्ष पायदानों में शामिल नहीं है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के मद्देनजर चीनी एयरलाइंस कंपनियों ने जापान के कई मार्गों के लिए अपनी सेवाएं स्थगित कर दी हैं। ईरान सरकार का कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के उसके प्रस्ताव पर उसे अमरीका से प्रतिक्रिया मिल गई है, लेकिन बातचीत की संभावना कम है क्योंकि दोनों पक्ष शर्तों को लेकर अब भी एकमत नहीं हैं। तेहरान ने बुधवार को ये घोषणा की। ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने के लिए 7 दिवसीय योजना प्रस्तुत की थी। अमरीका और ईरान के अधिकारी कतर के मध्यस्थों की मदद से अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहे हैं। ईरानी मीडिया केंद्रों की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के समक्ष अमरीका की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। इस प्रतिक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बुधवार को एक संबंधित सूत्र के हवाले से बताया कि दस्तावेज में जून में हुए समझौते के नवीन संस्करण पर दोनों पक्षों को वापस लाने की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ठोस कदम उठाना भी शामिल है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 31वें पाठ में आप साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखेंगे।
1: मिया और काइतो हारूसान हाउस में गपशप कर रहे हैं कि तभी माइक भी वहां आ जाता है। माइक अमेरिका से है और उसे जापान की पॉप संस्कृति में विशेष रुचि है।
0: तो आइए सुनते हैं 31वें पाठ की बातचीत।
2: कोंदो नो दोयोबी काइतो तो निंजा हकुबुत्सुकान नी इकिमासु।
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
2: हाई, मिन्ना दे 一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ、二人で行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले माइक ने ताम और मिया से कहा,
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: इस शनिवार काइतो के साथ निंजा संग्रहालय जा रहा हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
1: माइक जी, आपको निंजा सचमुच पसंद है ना?
0: तब माइक ने उन्हें भी साथ चलने को कहा।
2: हाय, मिन्ना दे इश्शो नी इकिमासेन का?
0: हाँ, क्यों ना सब साथ चलें?
1: इस पर मिया ने उत्तर दिया,
3: दोयोबी वा चोट्टो।
1: ओह, शनिवार को तो जरा।
0: ताम ने भी कहा,
3: वाताशी मो जुग्यो गा अरिमासु।
1: मेरी भी क्लास है।
0: ये सुनकर काइतो बोला,
4: चान्ने,
0: ये तो अफसोस की बात है।
4: जा, फ्तारी देखो।
0: तो फिर हम दोनों चलते हैं।
1: माइक और काइतो जिस संग्रहालय में जाने वाले हैं, वो मिए प्रिफेक्चर में है। वहाँ का ईगा उएनो क्षेत्र निंजा के गृह नगर के तौर पर जाना जाता है। संग्रहालय में लोग निंजा के घर देख सकते हैं और उनकी प्रस्तुति का भी आनंद ले सकते हैं। आज का मुख्य वाक्य है,
2: इश्शो नी इकिमासेन का,
1: यानी क्यों ना साथ चलें। ये वाक्य सीखकर आप दूसरों को कहीं साथ चलने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
5: इकिमासेन
0: है क्रिया,
5: इकु
0: यानी जाना का विनम्र नकारात्मक रूप, और उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द का लगाकर आप वाक्य को निमंत्रण में बदल सकते हैं।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इश्शो नी इकिमासेन का
1: साथ चलने के लिए आमंत्रित करने का तरीका है। इसे बनाने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर
5: मासेन
1: लगा है और उसके बाद जुड़ा है का, जिसका स्वर ऊंचा है।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इकिमासेन का इश्शो नी इकिमासेन का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला दूसरी महिला को कहीं साथ चलने का निमंत्रण दे रही है।
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा,
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
1: क्यों ना आज शाम को साथ खाना खाने चले।
0: यहाँ
5: कोंबन
0: का अर्थ है आज शाम,
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में, और
5: गोहान
0: का मतलब है खाना। तो
5: गोहान ओ तबे नी इकु
0: का मतलब हुआ खाना खाने के लिए जाना।
1: क्रिया
5: इक
1: यानी जाना से बना है
5: इकिमासेन का,
1: जो किसी को साथ में कहीं चलने का सुझाव देने का तरीका है।
0: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
1: ठीक है, चलते हैं।
5: ई देसु ने
0: का उपयोग किसी की बात मानने के लिए किया जाता है, और
5: इकिमाशो
0: है क्रिया
5: इक
0: यानी जाना का माशो रूप, इसका इस्तेमाल साथ में कुछ करने का सुझाव स्वीकारते समय किया जाता है।
1: पाठ 22 में भी हमने साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखा था और उस समय माशो का इस्तेमाल किया था, जैसे शाशिंगो तोरी माशो, यानी फोटो खींचते हैं।
0: उसमें और मासिंका में ये अंतर है कि माशो साथ में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका है, जबकि मासिंका विनम्र तरीके से ये पूछने के लिए है कि दूसरे व्यक्ति के पास साथ चलने का समय है या नहीं।
1: अब वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? कोनबान इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप अपने मित्रों के साथ बारबेक्यू करना चाहते हैं। सबके साथ को जापानी भाषा में कहेंगे
5: मिन्ना दे,
0: और बारबेक्यू करना के लिए कहेंगे
5: बारबेक्यू ओ सुरु।
0: क्रिया
5: सुरु
0: यानी करना का मास रूप है
5: शिमास।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: और अब सीख लेते हैं आज का सहज वाक्य जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: दोयोबी वा चोट्टो।
0: असल में
5: चोट्टो
0: का अर्थ है जरा। इसकी अंतिम ध्वनि को लंबा खींचते हुए हल्की आवाज में बोलने का भाव है कि आप हिचकते हुए मना कर रहे हैं। तो मना करने के लिए आप बोलेंगे
5: चोट्टो।
1: किसी सुझाव या निमंत्रण को मना करते समय अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिया ने कहा
5: तोयोबी वा चोट्टो,
1: जो घुमा फिरा कर ये कहने का तरीका है कि शनिवार को मैं व्यस्त हूँ या नहीं जा सकती।
0: अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लेते हैं।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
6: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
6: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं निंजा के बारे में।
1: निंजा का मुख्य काम था दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करना और खुफिया अभियान पूरे करना। उनका इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे लगभग 15वीं से 16वीं सदी के बीच आपस में लड़ते सामुराई सेनापतियों के दौर में सक्रिय थे।
0: मिए प्रिफेक्चर के ईगा क्षेत्र के निंजा और शिगा प्रिफेक्चर के कोगा क्षेत्र के निंजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
1: उनकी पोशाक देखकर लगता है जैसे वे खुफिया काम करने के लिए ही बने हैं, और दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करते समय तो निंजा अक्सर वेश बदल लेते थे।
0: मांगा या फिल्मों में निंजा जिस तरह के जादुई कारनामे करते हैं वो अक्सर काल्पनिक होते हैं, लेकिन असली निंजा भी कमाल के होते थे। उनके पास शुरिकेन होते थे, ये सितारे की आकृति का हथियार होता है जिसे दुश्मन पर दूर से फेंक सकते हैं।
1: इसके अलावा निंजा दबे कदम चलते थे ताकि लोग ये न जान पाए कि वो आसपास हैं, और उनके पास धुआं छोड़ने वाले बम भी होते थे।
0: कभी कभी वे मनोविज्ञान की मदद से अपने अभियान पूरे करते थे, और ये माना जाता है कि सामुराई सेनापति प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के रूप में उनका आदर किया करते थे। लेकिन उनके असली काम के बारे में अब भी बहुत कम जानकारी है, शायद इस वजह से ही निंजा इतने लोकप्रिय हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में माइक और काइतो मिए प्रिफेक्चर में निंजा संग्रहालय जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
2: この放送は
8: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। चीन में कौमी दिन मनाने के लिए जुमेरात को हफ्ता भर की तातीलात का आगाज हो गया है। इन तातीलात में करोड़ों चीनी सफर करते हैं, लेकिन बिगड़ते हुए दो तरफा ताल्लुकात की वजह से जापान आने वाले सियाहों की तादाद में कमी मुतवक्के है। चीनी हुकूमत का तखमीना है कि तातीलात के इस अरसे के दौरान लोग 2.13 अरब बार सफर करेंगे। चीन की बड़ी ट्रेवल एजेंसी का कहना है कि इन तातीलात के दौरान मकबूल इंतखाब जनूबी कोरिया, जनूब मशरकी एशिया और यूरोप हैं। जापान इससे कबल चीनी सयाहों में इंतहाई मकबूल था, लेकिन इस साल सरफहरिस्त मकामात में शामिल नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान तल्ख होते ताल्लुकात के पस मंजर में चीनी एयरलाइंस ने जापान के लिए कई रूट पर परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। ईरानी हुकूमत का कहना है कि इसे आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने की अपनी तजवीज़ का अमरीकी जवाब मौसूल हुआ है, लेकिन मुजाकरात के इम्कानात बदस्तूर गैर यकीनी हैं क्योंकि दोनों फरीक अब भी शराइत पर इख्तलाफ रखते हैं। तेहरान ने बुध के रोज ये ऐलान किया। ईरानी फरीक ने आबनाए को दोबारा खोलने के लिए 7 रोजा मंसूबा पेश किया था। अमरीका और ईरान के हुक्काम कतरी सालिसों की मदद से बिलवास्ता मुजाकरात का एक सिलसिला मुनक़िद कर रहे हैं। ईरानी मीडिया ज़राए ने खबर दी है कि वजीर खारजा अब्बास अराकची ने सदर मसूद पजिशकियान के सामने अमरीकी जवाब पेश किया। जवाब से मुतालिक तफसीलात जाहिर नहीं की गई हैं। ताहम रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने बुध के रोज एक मुतल्लिका जरिए का हवाला देते हुए कहा कि दस्तावेज में एक ऐसे अमल की वजाहत की गई है जो दोनों फरीकैन को जून में तय पाने वाली मुफाहमत की याददाश्त के एक बेहतर वर्जन की तरफ वापस ले जाएगा, जिसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ठोस इकदाम शामिल हैं। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जापान ने जुमेरात से गैर मुल्की शहरियों के लिए रिहायशी इजाजतनामे के तरीक़ेकार की फीस में इजाफा कर दिया है, और सितंबर तक के 3 महीनों में बड़े जापानी मसनूआत साजों के कारोबारी तासुर में बेहतरी आई है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: みんなで一緒に行きませんか？
1: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
2: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: マイクと一緒にポップカルチャ
3: ー。अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर। आज का मौजू है निंजा।
4: निंजा मौजूदा दौर के जासूसों या खुसूसी दस्तों की मानिंद थे। निंजा की तारीख इसरार की धुंध में लिपटी हुई है। ताहम ये 15वीं से 16वीं सदी के दरमियान जापान में जंगजू सरदारों के दरमियान लड़ाइयों के दौर में सरगर्म थे। मिए प्रीफेक्चर के इगारियो निंजा और शिगा प्रीफेक्चर के कोगारियो निंजा ज्यादा मशहूर हैं।
3: निंजा अपने मखसूस हुलिये के लिए मशहूर हैं।
4: लेकिन वो छुपकर दुश्मन के इलाके में दाखिल होने के लिए अक्सर सौदागरों, भिक्षुओं या घूम फिर कर तमाशा दिखाने वालों का भेस बदलते थे।
3: उनके पास जादू या हाथ की सफाई जैसे बहुत से हुनर भी तो होते थे।
4: मांगा यानी कार्टून की किताबों या फिल्मों में दिखाई जाने वाली ज्यादातर चीजें तो बाद में बनाई गई कहानियां हैं, लेकिन कुछ खुफिया हुनर उनके पास जरूर मौजूद थे। उनमें से एक धात का बना हुआ सितारा शुरीकेन या निंजा स्टार फेंकना था। वो पांव की चाप पैदा किए बगैर चलने और दुश्मन की नजरों से ओझल होने के लिए धुएं के बम इस्तेमाल करने जैसे हुनर भी जानते थे। निंजा अद्वियात और मौसमों के इल्म से भी खासी वाकफियत रखते थे। इसके अलावा वो अपने मिशन की अंजामदही के लिए इंसानी नफ्सियात पर असरअंदाज होने जैसी तकनीक भी इस्तेमाल करते थे। जंगजू सरदार उन्हें जासूसी सरगर्मियों के माहरीन के तौर पर अहमियत देते थे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा मालूमात दस्तियाब नहीं है। ये पुरासरियत भी इनकी मकबूलियत की एक वजह है।
3: निंजा जापान की तारीख और सकाफत का एक दिलचस्प मौजू मालूम होता है। मैं इस बारे में मजीद मताला करूंगी। अगले सबक में माइक और काइटो मिए प्रीफेक्चर में वाके निंजा म्यूजियम पहुंचते हैं।
5: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 1 अक्टूबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गो और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान में विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट शुल्क बृहस्पतिवार से बढ़ा दिया गया है। पहले निवास दर्जे के नवीनीकरण या परिवर्तन का शुल्क 6,000 येन यानी लगभग $38 और ऑनलाइन शुल्क 5,500 येन यानी लगभग $35 था। बृहस्पतिवार से ये शुल्क निवास अवधि के आधार पर अलग-अलग कर दिया गया है। 3 महीने के लिए निवास अवधि बढ़वाने या निवास दर्जा बदलवाने के लिए अब काउंटर और ऑनलाइन शुल्क बढ़ाकर 10,000 येन यानी लगभग $63 कर दिया गया है। निवास अवधि को 1 साल के लिए बढ़वाने का शुल्क 33,000 येन यानी लगभग $210 और इसका ऑनलाइन शुल्क 27,000 येन यानी लगभग $170 हो गया है। निवास अवधि को 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बढ़वाने का शुल्क 75,000 येन यानी लगभग $476 और इसका ऑनलाइन शुल्क 65,000 येन यानी लगभग $413 कर दिया गया है। स्थायी निवास परमिट का शुल्क 10,000 येन से बढ़ाकर 2,00,000 येन यानी लगभग $1,270 कर दिया गया है। इसका आवेदन केवल काउंटर पर ही किया जा सकता है। शरणार्थी दर्जा प्राप्त लोगों और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों सहित कुछ व्यक्तियों को शुल्क में छूट दी गई है। स्थायी निवास परमिट के जांच संबंधी दिशा निर्देशों में भी संशोधन किया गया है। ये परमिट देने या ना देने पर विचार करते समय अधिकारी इस बात पर गौर करेंगे कि आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय समान आकार के जापानी परिवार की औसत आय से लगातार अधिक रही है या नहीं। जापान में सितंबर तक की तिमाही में बड़ी विनिर्माण कंपनियों के कारोबारी विश्वास में सुधार हुआ। बृहस्पतिवार को जारी बैंक ऑफ जापान के तांकान सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार एआई संबंधी मांग के बलबूते लगातार छठी तिमाही में विश्वास बढ़ा। मनोभाव सूचकांक 24 अंक पर रहा, जो पिछली तिमाही से 2 अंक अधिक है। धनात्मक आंकड़ा दर्शाता है कि निराशावादी रुख रखने वाली कंपनियों की तुलना में आशावादी कंपनियों की संख्या अधिक है। केंद्रीय बैंक ने लगभग 9,000 कंपनियों का सर्वेक्षण किया। सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग के चलते विशेष रूप से अलौह धातु, उत्पादन मशीनरी और विद्युत मशीनरी क्षेत्रों का विश्वास सुधरा। हालांकि इसी अवधि में गैर विनिर्माताओं के मनोभाव में 2 अंकों की गिरावट आई और ये धनात्मक 35 पर पहुंच गया। कर्मचारियों और कच्चे माल की बढ़ती लागत के साथ खराब मौसम ने न केवल खुदरा विक्रेताओं बल्कि आवास और रेस्तरां क्षेत्रों की कंपनियों का विश्वास भी कमजोर किया। श्रमिकों की भारी कमी वाले क्षेत्रों में विदेशियों को आमंत्रित करने की जापान की योजना एक चुनौती का सामना कर रही है। जापानी शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालयों और अन्य संस्थानों को इस नए कार्यक्रम की भाषा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई आ सकती है। अगले साल अप्रैल से शुरू होने वाले 2 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 4,20,000 विदेशी स्वीकारे जाने की उम्मीद है। निर्माण, नर्सिंग देखभाल, कृषि व अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली ये योजना जापानी भाषा प्रवीणता या अध्ययन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने वाले लोगों पर लागू होती है। नया कौशल विकास रोजगार कार्यक्रम 30 वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान लेगा। दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण ना कर पाने वाले आवेदकों को काम शुरू करने से पहले 100 या उससे अधिक घंटों की भाषा कक्षाएं लेनी होंगी और इस 3 साल के कार्यक्रम के दौरान अपने नियोक्ताओं के खर्च पर 100 या उससे अधिक घंटों की कक्षाएं भी लेनी होंगी। जून में जापानी भाषा के लगभग 900 विद्यालयों और अन्य संस्थानों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 30% से भी कम ने कहा कि वे ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं या प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं। आव्रजन सेवा एजेंसी ने जापानी भाषा के विद्यालयों और अन्य संस्थानों से सहयोग प्राप्त करने के लिए पिछले महीने एक सर्वेक्षण करते हुए उन्हें ब्यौरा दिया।
एजेंसी के एक अधिकारी ने उनसे गुणवत्ता बनाए रखते हुए प्रशिक्षण के अवसर सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने पर विचार करने का आग्रह किया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। चीन में बृहस्पतिवार से राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। ये वो समय है जब करोड़ों चीनी लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में आई खटास के कारण जापान आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आने की आशंका है। चीन सरकार का अनुमान है कि छुट्टियों के दौरान 2.13 अरब यात्राएं होंगी। चीन की प्रमुख ट्रैवल एजेंसी का कहना है कि इस अवधि के दौरान लोकप्रिय गंतव्य दक्षिण कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप हैं। पहले जापान चीनी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय था, लेकिन वो इस साल शीर्ष पायदानों में शामिल नहीं है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के मद्देनजर चीनी एयरलाइंस कंपनियों ने जापान के कई मार्गों के लिए अपनी सेवाएं स्थगित कर दी हैं। ईरान सरकार का कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के उसके प्रस्ताव पर उसे अमरीका से प्रतिक्रिया मिल गई है, लेकिन बातचीत की संभावना कम है क्योंकि दोनों पक्ष शर्तों को लेकर अब भी एकमत नहीं हैं। तेहरान ने बुधवार को ये घोषणा की। ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने के लिए 7 दिवसीय योजना प्रस्तुत की थी। अमरीका और ईरान के अधिकारी कतर के मध्यस्थों की मदद से अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहे हैं। ईरानी मीडिया केंद्रों की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के समक्ष अमरीका की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। इस प्रतिक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बुधवार को एक संबंधित सूत्र के हवाले से बताया कि दस्तावेज में जून में हुए समझौते के नवीन संस्करण पर दोनों पक्षों को वापस लाने की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ठोस कदम उठाना भी शामिल है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 31वें पाठ में आप साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखेंगे।
1: मिया और काइतो हारूसान हाउस में गपशप कर रहे हैं कि तभी माइक भी वहां आ जाता है। माइक अमेरिका से है और उसे जापान की पॉप संस्कृति में विशेष रुचि है।
0: तो आइए सुनते हैं 31वें पाठ की बातचीत।
2: कोंदो नो दोयोबी काइतो तो निंजा हकुबुत्सुकान नी इकिमासु।
3: माइक सान वा होंतो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
2: हाई मिन्ना दे 一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ、二人で行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले माइक ने ताम और मिया से कहा,
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: इस शनिवार काइतो के साथ निंजा संग्रहालय जा रहा हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: माइक सान वा होंतों नी निंजा गा सुकी देसु ने।
1: माइक जी, आपको निंजा सचमुच पसंद है ना?
0: तब माइक ने उन्हें भी साथ चलने को कहा।
2: हाय, मिन्ना दे इश्शो नी इकिमासेन का?
0: हाँ, क्यों ना सब साथ चलें?
1: इस पर मिया ने उत्तर दिया,
3: दोयोबी वा चोट्टो।
1: ओह, शनिवार को तो जरा।
0: ताम ने भी कहा,
3: वताशिमो जुग्यो गा अरिमास।
1: मेरी भी क्लास है।
0: ये सुनकर काइतो बोला,
4: जानने,
0: ये तो अफसोस की बात है।
4: जा, फ्तारी देखो।
0: तो फिर हम दोनों चलते हैं।
1: माइक और काइतो जिस संग्रहालय में जाने वाले हैं, वो मिए प्रिफेक्चर में है। वहाँ का ईगा उएनो क्षेत्र निंजा के गृह नगर के तौर पर जाना जाता है। संग्रहालय में लोग निंजा के घर देख सकते हैं और उनकी प्रस्तुति का भी आनंद ले सकते हैं। आज का मुख्य वाक्य है,
2: इश्शो नी इकिमासेन का,
1: यानी क्यों ना साथ चलें। ये वाक्य सीखकर आप दूसरों को कहीं साथ चलने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
5: इकिमासेन
0: है क्रिया,
5: इकु
0: यानी जाना का विनम्र नकारात्मक रूप, और उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द का लगाकर आप वाक्य को निमंत्रण में बदल सकते हैं।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इश्शो नी इकिमासेन का
1: साथ चलने के लिए आमंत्रित करने का तरीका है। इसे बनाने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर
5: मासेन
1: लगा है और उसके बाद जुड़ा है का, जिसका स्वर ऊंचा है।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इकिमासेन का, इश्शो नी इकिमासेन का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं, जिसमें एक महिला दूसरी महिला को कहीं साथ चलने का निमंत्रण दे रही है।
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा,
6: कोंबन, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
1: क्यों ना आज शाम को साथ खाना खाने चले।
0: यहाँ
5: कोंबन
0: का अर्थ है आज शाम,
5: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में, और
5: गोहान
0: का मतलब है खाना। तो
5: गोहान ओ तबे नी इकु
0: का मतलब हुआ खाना खाने के लिए जाना।
1: क्रिया
5: इक
1: यानी जाना से बना है
5: इकिमासेन का,
1: जो किसी को साथ में कहीं चलने का सुझाव देने का तरीका है।
0: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
7: ई देसु ने, इकिमाशो।
1: ठीक है, चलते हैं।
5: ई देसु ने
0: का उपयोग किसी की बात मानने के लिए किया जाता है, और
5: इकिमाशो
0: है क्रिया
5: इक
0: यानी जाना का माशो रूप, इसका इस्तेमाल साथ में कुछ करने का सुझाव स्वीकारते समय किया जाता है।
1: पाठ 22 में भी हमने साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना सीखा था और उस समय माशो का इस्तेमाल किया था, जैसे शाशिंगो तोरी माशो, यानी फोटो खींचते हैं।
0: उसमें और मासेंका में ये अंतर है कि माशो साथ में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका है, जबकि मासेंका विनम्र तरीके से ये पूछने के लिए है कि दूसरे व्यक्ति के पास साथ चलने का समय है या नहीं।
1: अब वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? कोनबान इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप अपने मित्रों के साथ बारबेक्यू करना चाहते हैं। सबके साथ को जापानी भाषा में कहेंगे
5: मिन्ना दे,
0: और बारबेक्यू करना के लिए कहेंगे
5: बारबेक्यू ओ सुरु।
0: क्रिया
5: सुरु
0: यानी करना का मास रूप है
5: शिमास।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: और अब सीख लेते हैं आज का सहज वाक्य जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: दोयोबी वा चोट्टो।
0: असल में
5: चोट्टो
0: का अर्थ है जरा। इसकी अंतिम ध्वनि को लंबा खींचते हुए हल्की आवाज में बोलने का भाव है कि आप हिचकते हुए मना कर रहे हैं। तो मना करने के लिए आप बोलेंगे
5: चोट्टो।
1: किसी सुझाव या निमंत्रण को मना करते समय अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिया ने कहा
5: तोयोबी वा चोट्टो,
1: जो घुमा फिराकर ये कहने का तरीका है कि शनिवार को मैं व्यस्त हूँ या नहीं जा सकती।
0: अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लेते हैं।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
6: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
6: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं निंजा के बारे में।

0: का मुख्य काम था दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करना और खुफिया अभियान पूरे करना। उनका इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे लगभग 15वीं से 16वीं सदी के बीच आपस में लड़ते सामुराई सेनापतियों के दौर में सक्रिय थे।
1: मिए प्रिफेक्चर के ईगा क्षेत्र के निंजा और शिगा प्रिफेक्चर के कोगा क्षेत्र के निंजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
0: उनकी पोशाक देखकर लगता है जैसे वे खुफिया काम करने के लिए ही बने हैं, और दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करते समय तो निंजा अक्सर वेश बदल लेते थे।
1: मांगा या फिल्मों में निंजा जिस तरह के जादुई कारनामे करते हैं वो अक्सर काल्पनिक होते हैं, लेकिन असली निंजा भी कमाल के होते थे। उनके पास शुरिकेन होते थे, ये सितारे की आकृति का हथियार होता है जिसे दुश्मन पर दूर से फेंक सकते हैं।
0: इसके अलावा निंजा दबे कदम चलते थे ताकि लोग ये न जान पाएं कि वो आसपास हैं, और उनके पास धुआं छोड़ने वाले बम भी होते थे।
1: कभी कभी वे मनोविज्ञान की मदद से अपने अभियान पूरे करते थे, और ये माना जाता है कि सामुराई सेनापति प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के रूप में उनका आदर किया करते थे। लेकिन उनके असली काम के बारे में अब भी बहुत कम जानकारी है, शायद इस वजह से ही निंजा इतने लोकप्रिय हैं।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में माइक और काइतो मिए प्रिफेक्चर में निंजा संग्रहालय जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
2: रेडियो जापान टोक्यो।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। चीन में कौमी दिन मनाने के लिए जुमेरात को हफ्ता भर की तातीलात का आगाज हो गया है। इन तातीलात में करोड़ों चीनी सफर करते हैं, लेकिन बिगड़ते हुए दो तरफा ताल्लुकात की वजह से जापान आने वाले सियाहों की तादाद में कमी मुतवक्के है। चीनी हुकूमत का तखमीना है कि तातीलात के इस अरसे के दौरान लोग 2.13 अरब बार सफर करेंगे। चीन की बड़ी ट्रेवल एजेंसी का कहना है कि इन तातीलात के दौरान मकबूल इंतखाब जनूबी कोरिया, जनूब मशरकी एशिया और यूरोप हैं। जापान इससे कबल चीनी सयाहों में इंतहाई मकबूल था, लेकिन इस साल सरफहरिस्त मकामात में शामिल नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान तल्ख होते ताल्लुकात के पस मंजर में चीनी एयरलाइंस ने जापान के लिए कई रूट्स पर परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। ईरानी हुकूमत का कहना है कि इसे आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने की अपनी तजवीज़ का अमरीकी जवाब मौसूल हुआ है, लेकिन मुजाकरात के इम्कानात बदस्तूर गैर यकीनी हैं क्योंकि दोनों फरीक अब भी शराइत पर इख्तलाफ रखते हैं। तेहरान ने बुध के रोज ये ऐलान किया। ईरानी फरीक ने आबनाए को दोबारा खोलने के लिए एक 7 रोजा मंसूबा पेश किया था। अमरीका और ईरान के हुक्काम कतरी सालिसों की मदद से बिलवास्ता मुजाकरात का एक सिलसिला मुनक़िद कर रहे हैं। ईरानी मीडिया ज़राए ने खबर दी है कि वजीर खारजा अब्बास अराकची ने सदर मसूद पजेशकियान के सामने अमरीकी जवाब पेश किया। जवाब से मुतालिक तफसीलात जाहिर नहीं की गई हैं। ताहम रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने बुध के रोज एक मुतल्लिका जरिए का हवाला देते हुए कहा कि दस्तावेज में एक ऐसे अमल की वजाहत की गई है जो दोनों फरीकेन को जून में तय पाने वाली मुफाहमत की याददाश्त के एक बेहतर वर्जन की तरफ वापस ले जाएगा, जिसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ठोस इकदाम शामिल हैं। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जापान ने जुमेरात से गैर मुल्की शहरियों के लिए रिहायशी इजाजतनामे के तरीक़ेकार की फीस में इजाफा कर दिया है, और सितंबर तक के 3 महीनों में बड़े जापानी मसनूआत साजों के कारोबारी तासुर में बेहतरी आई है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।